सरकार ने वहाँ पे बाजा देखा गया माशाल्लाह, सरकार बोले आपके यहाँ तो बड़ा प्यारा बाजा। तो आप सरकार बोलते कि क्या आपको बजाते आता है, बिलाल को बुला के बेशक। बोले बिलाल, बिलाल बोलते मेरे को बेशक बजा जाता है। तो बोले कैसे बजाते हैं, तो बोले क्या बोले, क्या बोलता है फिर। तो फिर बाजा आपने, आप सरकार ने बाजा बजाया।